आए जदों आनंदपुर साहब दरबार विच नहीं गए, उत्थे आए जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा सोहना बाग सी, ते बाग दी सेवा कर रहा है भाई केसरा सिंह, आके चरणां विच बेनती कीती, भाई साहब कृपा करो सानू ऐसा मार्ग दसो कि साढ़े कोल एक सिख दी हत्या हो गई है, जो पानी मंगदा मंगदा चलिया गया, असी उहदे मूंह विच घुट पानी दा ना पाया, ते हुण असी ए अपने सिर ते पिया होया गुनाह साडा कीता होया पाप किवें बख्शिया जावे, ते सानू धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दर्शन होण। भाई केसरा सिंह ने आखिया तुसी इसे बाग दी सेवा करो, समा आएगा तुहानू धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दर्शन भी होणगे। भाई केसरा सिंह रोज अमृत वेले आ फुलां दी सोहना एक सेरा बना के लै जांदा सी, ओह सेरा माता जीतो जी जदों धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दरबार विच आउंदे सन तां उहनां दे गल विच पाया करदे सन, ओह सेरा अज सोइना मोइना ने अपने आंसुआं दे नाल परोया तैयार कीता, आख्या भाई केसरा सिंह लै जा साडी बेनती, ते पातशाह नूं कही साडे वास्ते की हुक्म है। जदों भाई केसरा सिंह सेरा लै के आया, ऐसे प्यार नाल गुद्दिया होया सेरा, जिस दे एक एक फुल ते सोइना मोइना ने पता नहीं कितने कितने अथरू डेगे हैं, जदों माता जीतो जी नूं लिया दिता जो धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह दे सुपत्नी सन, लो माता जी, माता जी कहन लगे भाई केसरा सिंह अज बड़े प्यार नाल सेरा गुद्दियाई, एडा सोहना सेरा, आख्या ये मैं नहीं गुद्दिया, ये कोई दो सोइना ते मोइना दनपति आए हन, ये उन्हां गुद्दिया, ताही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आ गए। माता जीतो जी ने सेरा साहब जी दे गल विच जदों पाया, अंतर जामी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहन लगे भाई केसरा सिंह आ बेशक उन्हां नूं जाके कह दे सोइना मोइना नूं बाग दी सेवा जरूर करन, लेकिन जदों असी बाग विच आईए तां साडे मत्थे ना लगन। साध संगत बोलो श्री क्योंकि साडे सिख ने वचन कीता है कि तुहानू ठाकुर दर्शन नहीं देणगे। वापस आया भाई केसरा सिंह, मन बड़ा उदास है, सोइना मोइना समझ गए कि अजे हुक्म नहीं मिले, रोज नाम जपदे हन सेवा करदे हन। एक दिन रात दा समय दोनों अपनी झुग्गी विच बैठे शब्द गा रहे हन, मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ, ताई बुआ खड़किया, बुआ खोलिया की वेख्या माता जीतो जी खड़ोते, आख्या मेरे बच्चियो फिक्र ना करो, जिस प्यार नाल तुसी गुरु घर दी सेवा कर रहे हो नाम जप रहे हो एक दिन ओ जरूर आवेगा, मेरा मन कहिंदा जदों तुहानू कलगीधर पातशाह दे दर्शन होणगे। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। ओ सतवीं दा दिन नेड़े नेड़े आ रहा, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा अवतार पुरब, ते सोइना मोइना ने सोहने फुल तैयार कीते के जाके साहब जी दे चरणा विच भेटा करके गुलदस्ता बना के सोना भेजांगे। एक दिन विच रह गई, अगले दिन पो सतवीं दा दिन सी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे आगमन दा, प्रकाश उत्सव दा, ताईं रात एक रोड़ा जलाली करके फकीर आया, उसने सारी क्यारियां विचों फुल तोड़ के ले जाण लगा, सोइना मोइना ने जदों ए वेख्या ते चरण पकड़े, आख्या ए फुल तेरे वास्ते ने, ए फुल असी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह वास्ते सजा के रखे। तां ओ कहण लगा जे मैनू फुल ना दोगे तो मैं तुहानू श्राप दे के जावांगा। कंब गए, गश खा के दोनों डिग पए, सर्दियां दी रुत है, दोनों दी लोथां बाग विच पईयां। जदों सवेरे रोड़ा जलाली फकीर फुलां लै के गुलदस्ता बना के धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे चरणां विच पहुंचिया, अज पौ सतवीं दा दिन है, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा जन्म दिन,
सारे पेटावां लियारे जदों रोड़ा जलाली ने फुल रखे अगे तां धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह त्रबक के उठ पए आख्या ओ रोड़ा जलाली तू रोड़ा जलाली नहीं तू रोड़ा पलाली है तू ए फुल नहीं तोड़ के लियाया बाग विचों गुरु नानक दे चरणों विचों दो रूहां नूं तोड़ के लियाया साहब जी उठे आए उस थां ते जिथे सोयना ते मोयना बेसुरत होके पैन दोनों दी लोथां पईआं साहब जी दे नाल सारियां संगतां बाग विच आ गईआं साहब जी उत्थे ही धरती ते बह गए एक गोडे ते सोना सोयनिया दा सिर रखिया एक गोडे ते मोयना दा भाई दया सिंह जी पातशाह जल लियाओ जल दे छट्टे दिते दोनों ने नेत्र खोले की वेखिया साडा सिर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी गोद विच है सात संगत बोलो श्री आख्या सुपना है के सच साहब जी कहन लगे सच है अज तुहाडे प्यार दे सदके मेरे सिख ने भी तुहानू बख्शिया और मैं भी तुहानू बख्शिया आओ अज असी अपना ए पो सतवीं दा पुरब तुहाडी झुग्गी विच ही मनावांगे झुग्गी विच लै गए साहब जी बह गए सारियां संगतां उत्थे ही आ गईयां साहब जी ने आख्या ओ एडे प्यार नाल सानू याद करदे सो शब्द सुनांदे सो हुण असी आए हां हुण भी तां सुणाओ दोनों ने फिर ओ शब्द गाव्या अज मन दियां लोचावां पूरन हो गईयां क्योंकि धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे प्रतख दर्शन हो रहे सात सगत बोलो श्री वाहे एडा प्यार किते साडे मन विच भी आ जावे साडा भी मन और रसना एक हो के ए अखर आखे तां फिर गुरु दूर नहीं है बुलिया साईं ते तो वख ना फर्क भी विचों कख ना पर वेखण वाली अख ना आओ करिए बेनती मन हिरदा और रसना एक होके ए पुकारे की आओ।

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोठ महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असि आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हाँ कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चों नाल गलबात पंजाबी विच करते हो तो आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है तो अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चों पास पंजाबी विच गलबात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तों विच, घर दे नौकरा चाकरा नाल तां इह समा उन्हां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकंगे तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रिहा, ओह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकंगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकंगे? हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असीं तां उस ताते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हाँ। जे कुछ ऊंटाई है तां ध्यान दिओ ते पूरी करो। आप जितनियां वध तो वध जवाना बच्चों पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टैप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असीं तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हाँ। जदों गुरु नानक देव जी का प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटार हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सज्जना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगों दाते दा अपना काम है, आप ही सहाई होएगा। फिर लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

आया है उदो तो मेरे मन नु शांत हुण ते जेड़े मेरे अंदर वसदे हुए मेरे दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जेड़े वैरी सन ऐ पातशाह हुण ते ओ भी मेरे मित्र बन गए हैं ओ भी हुण मेरा बुरा नहीं चितवदे सारे ही चंगा चितवदे हैं ये सब तेरी कृपा है ये तेरी मेहर है तू तो मैनू एनिया बख्शिशा कीतियां हैं एनिया रहमतां कीतियां हैं पातशाह हुण ते मैं आनंद ही आनंद वेख रहा हाँ चारे पासे खेड़ा ही खेड़ा नजर आउंदा है क्योंकि तेरी कृपा दृष्टि हो गई है ते जदों तेरी कृपा दृष्टि होवे सारे कार्ज फिर अपने आप रास हुंदे हन ते सतगुरु तेरी मेहर है तेरी कृपा है।

गोपाल गोविंद ना कब जोरिया देह दस मन चाओ न जाए सूर्य देह दस मन चाओ न जाए।

शरण विचों मिल जाना है, मिट के मिलना है, हों मिटा के मिलना है, निर्माण होके मिलना है। बल्कि पवित्र अवदास जी तां कहंदे ने, मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन कहटे, मैं तो मोल महंगी लई जी सटे। जिंदगी दे के लई असा भी तां साडे वड्डियां नूं सिर दे के सरदारी लई। किन्ना मुल है इसका। कबीर जी कोल आया सी कोई प्रेमी, कहन लगा जी मैनू भी नाम दे दे, भगती मेरी भी झोली पा दे। ते भगत जी टोका तिखा करन लग, छुरा तिखा करन लग पे। कहिंदा भगत जी मेरा काम कर दिओ, पहला मैनू भगती दे देंदे, फिर तुसी अपने काम लगे रहिंदे, मैं जाना सी। भगत जी कहिंदे ने तेरा ही काम कर दे। ए महाराज, मेरा काम थोड़ा पै कर दे, तुसी तां टोका तिखा पै कर दे। कहन लगे तेरा सिर लवांगे, नाम दे देंगे। कहन लगा फिर मैं करना की, जब सिर ही दे दिता। कहन लगे फिर तू की समझना, गली बाती मिल जाएगा, रुपया नाल मिल जाएगा, मुल विकन वाली चीज है। गुरमुखा, ए ता भाई अपना आपा दे के मिलने वाली चीज है। और जेड़ा सिर देना है ना, एदा मतलब ही है कि मन की मत त्याग के गुरु की मत लै रहे, होमे त्याग के निम्रता नूं धारण कर लेना, ते गुरमुखा दे सामने, गुरु के सामने, प्रभु के सामने मान तान तज मोह अंधेरा।

अपने सह दे नाल अपने प्रभु दे नाल रथे गए बाब जिन्हां ने अपना मन अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया वो सारियां नूं चंगे लगदे ने क्यों जो हर का प्यारा सो सब

बाहों वारी बन जा, खनिए बन जा, तो साहिब के नामी ऐ परमेश्वर मैं तेरे दुबारी तेरे नाम तो कुर्बान जाना। तन गुरु नानक साहब जी बयान करते हैं, आओ अपनिया बिरतियां उस पास ले चली। गुरु नानक साहब के पिता मेहता कालू जी धन गुरु नानक साहब का राह पै तकते हैं। बेबे नानकी गुरु नानक साहब के वड्डे भैन जी आए अपने पिता मेहता कालू नूं मिले, नाल बेबे नानकी दे पति भाई अजय राम भी आए। बेबे नानकी जी पिता मेहता कालू नूं मिल के अपनी माता माता तृप्ता नूं गले लग के मिले, तेनू गल ना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गए ते नाले कहन लगे जीए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नू देखी है तू आई है, कुछ भरोसा होया मन नू कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे भाई अजय राव अपने सौरा साहब मेहता कालू जी के पैरों से मत्था टेके, मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी पूछते ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए, असी ते इस आस्ते आए हाँ कि इस वरी जरूर महाराज के दर्शन होंगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब के भाई लगते ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने, पर वो रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब के सेवक ज्यादा है। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो, मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते है, भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते। इन्हां ने हाथ जोड़ के आखे है बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने, ता बेबे नानकी जी कहन लगे हाली आए ते नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी, बहार ने आना होवे कुंजां दियां डारां पहला उड़न लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाई अजय राव गुरु नानक साहब दी याद विच जंगल वाल तुर पए, एक दरख्त दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब दा उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए, अमली अमल ना अंबड़ै मच्छी नीर ना होए, जो रते सह आपने तिन पावे सब होए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदे, अमल तो बगैर जी नहीं सकदा, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती, असी भी तेरे नाल इस तरह ही प्यार करने हैं, तेरे बगैर असी भी जी नहीं सकते।

अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद में मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी राह पे देखते और एक पासे भाई अजय राम और एक पासे रायपुर की तलवंडी का राजा राय बुलार और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी में मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पे थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मार दे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदे होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े हो पर सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखिल होए और आंदियां धन गुरु नानक साहब ने हिस्सा दिलाई सत करतार ए सत करतार। अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे। धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओह धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंढ ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे हैं तैनू बड़ा मैं झिड़के है तैनू मैं एक बारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल। धन गुरु नानक साहब माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पा लै आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनूं चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनूं चोला पवा। अखां खोलियां सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्गा घुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्म दिन ते चोला सी के रखदी है। साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लें मैं फिर मिलांगी।

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब ने कह लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नू मिलो, बड़ी वैराग विच है। धन गुरु नानक साहब माता नू मिल के बेबे नानकी जी नू मिलन वास्ते उठे, ता बेबे नानकी छत तू थले उतरे, भज के आए चरणा ते मत्था टेकन वास्ते, पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लईआं, कहन लगे ना भैण तुसी वड्डे हो, भैणां भरावां दे पैरां ते मत्था टेकन ए नहीं हो सकदा। सात संगत, ए इतिहास ए कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ए कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ताकि साढ़े मना विच साढ़े हिरदे विच प्यार होवे। जे साढ़े हिरदे विच प्यार होवेगा साढ़े घर विच भी प्यार होवेगा। जिदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिदे दिल विच प्यार नहीं, वो किसे नूं की प्यार देवेगा। चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है, चंगा पति बनना जरूरी है, चंगा पुत्र बनना जरूरी है, चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है। जेड़ा चंगा पति ना बन सके, चंगा पिता ना बन सके, जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके, जेड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके, सात संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता। ओ ना सिख हो सकता है, ओ ना मुसलमान, ना हिंदू, ना ईसाई, वो किसे गिनती विच नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने

जद इतने बचन कहे भैन जी है बेबे नानकी तुसी वड़े हो तुसी मेरे पैरों से मत्था टेको ते नहीं हो सकता साथ संगत एक एक लफज विचों साढ़े जीवन वास्ते सिख्या है ते वक्री गल है इना गल्ला नू कोई मन्ने पावे ना मन्ने पर सुख ता मनण विच ही है हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नू किया मरदाने आ हुण तुसी जा के भाई अजय राम जी नू लैके आओ शहर वासियां नू पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाने का सुभाग प्राप्त हो रहा है पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पुछदे ने बेटा कित्थे चले साहब जी कहन लगे मरदाना भाई अजय राम नू वैराग विच उठा नहीं सके धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ये प्यार भागा नाल मिलता है और इस प्यार नूं ही जानता है जिसने ये प्यार किया भगत कबीर जी कहंदे ने सो कत जाने पीर पर आई जां के अंतर दर्द ना पाई भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए एको ही गल नजर आती भगत रविदास वह भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब जी कहते ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले के ए प्रेमा भगती दे तीर जड़े ने जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने ओही जाने

पहुंचे। ओना दे सिर दे हाथ रखे है, अखां खोलियां, तन गुरु नानक साहब दे दर्शन कीते, मन तृप्त हो गया, सारे प्यारे इकट्ठे हो गए। तन गुरु नानक साहब घर वापस आए। राय भोज दी तलवंडी दा राजा राय बुलार भी दर्शना वास्ते आया, मत्था टेकया, सबन बथेरा किया, राय जी तुसी बजुर्ग हो। पर राय बुलार कहन लगे, मैं पावे मुसलमान हां, पर जद मैं तुहानू देखदा मैनू तुहाडे मत्थे तों अल्लाह दा नूर नजर आंदा है। तुहानू देखदा, तुहाडे मस्तक नूं देखदा, तुहाडे मस्तक तों अल्लाह दा नूर मैनू नजर आंदा है। साध संगत महापुरुष किसे एक दे नहीं, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ

गुरु के सिखो वो मेरे दुष्ट दमन पिता साहिब कलगीधर पातशाह निरंकार दे चरणा नाल जुड़े हैं। आपां भी थोड़ा समा मेरे पातशाह दे चरणा नाल जुड़ के इस शब्द नूं श्रवण कीजिए। मैनू याद है कैलगरी विखे ये शब्द दास पढ़ रहा सी। आ गोरे सिख जिन्हां ते पातशाह दी बहुत मेहर है, बहुत कृपा है। आ नवे सिख सज रहे भावें उन्हूं समझ नहीं सी आ रही, सुन रहा सी। बीबी सी उसने उठ के कहा भावें मैनूं अर्थ समझ विच नहीं आए पर मेरा मन कलगीधर पातशाह गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के चरणों नाल जुड़ गया। उन्हें आख्या मैं नितनेम नाल इसनूं टेप ते सुनदी हाँ और बड़ा ही मैं जिवें शब्द सुन के हेमकुंड साहिब ते पहुँच जानी हाँ। तो गुरु की साध संगत आओ आपां भी उसे ध्यान नाल

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बोताय। मथुरा कहिंदा है पट के जब तक साडे भाग नहीं समझागे असी संसार विच विचर रहे सी, लेकिन कल युग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज। और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावे जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावे सनकाद साध सिदादक मुन जन गावे अछल छला, गावे गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानी। उस गुरु नानक दे गुण जदों राजे जनक दा दरबार लग्या सी और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की, और भगत वड्डा क्यों गिणिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखिए। सात संगत बोलो श्री, ते भाई गुरदास जी कहिंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरां दा जिक्र राजा जनक देव लोक नूं गया, देवते भी लोचदे हन कि कोई जपण वाला साडी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नूं देव लै के देवते लै के अपनी पुरियां विच जा रहे सन, ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई। राजे जनक ने पुछया कौन रो रहे हन, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हन जिथे पए होए जीव अपने कर्मां दे अनुसार भोग भोगदे हन, क्योंकि इन्हां जीआं ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती, इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जिहड़ा हीरे लालां तों भी महंगा सी, जिहड़ा स्वास हीरे लालां तों भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पाके, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता और तू बंदगी नहीं कीती तां तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड्डिया, उस स्वासां नू कौडियां दे बदले वेच छड्डिया। ताई आखिया

कथाओं नहीं तुझे है आ बदो पुरख बिधाते आंखों सूहे जिठे सबे थाओ नहीं तुझे है आ बदो पुरख बिधाते आंखों सूहे वसती सगन अपार अनूप रामदासपुर वसती सगन अपार अनूप रामदासपुर हरिहा नानक कस

धन गुरु अर्जन साहब इस शब्द दे विच इंसान दा इस संसार तो जाना इस तरह बयान करते ने, पता नहीं सी कि इस तरह परमेश्वर दा सदा आ जाएगा। साहब जी कहते ने इंसान हर काम महूरत देख के करता है। घर बनाना होवे घर बन जावे, ग्रह प्रवेश करना होवे या कोई ब्याह होवे, कोई भी खुशी का काम होवे ता इंसान सारिया तो पहला दिन देखता है, तारीख देखता है, महीना देखता है, साल देखता है, मुहूर्त देखता है। एक काम इस महीने इस तारीख नू करना है, इस वेले करना है, ताकि सारिया नू बुला लवा, किधरे कोई नाराज ना हो जावे कि मैनू नहीं बुलाया। गुरु साहब जी कहते ने इंसान तू हर काम मुहूर्त ते कीता, दिन देख के कीता, साल देख के कीता, पर मरण लगिया तू कोई मुहूर्त ना देखिया, कोई तारीख ना देखी, ए ना सोचिया इस दिन इस तारीख नू इस महीने इस मुहूर्त नू मरा सारिया नू दस दिया ताकि कोई नाराज ना हो जाए कि मैनू नहीं बुलाया। साहब जी कहते ने इंसान हर काम तू मुहूर्त दे कर सकदा है, पर जड़ी मौत है ये मुहूर्त नहीं देखन देंदी। मरण ना मुहूर्त पुछया, पुछी थित ना वार, मौत ने ना दिन देखन देता, ना तरीक देखन देती, ना कोई महीना देखन देता। बस इन्ना ही पता लगा चंगा पाला सारे परिवार नू मिलके घरों तुरे कि मैं चलदा आ जावांगा वापस, घरों ते तुर पिया, परिवार नू मिलके बड़ा खुश है। पर की पता सी कि जांदियां जांदियां रस्ते विच ही परमेश्वर दा हुक्म आ जाना है। घर वाले कारू डीकदे पए ने, आ जाणगे शाम नू, मेल हो जाएगा, पर क्या पता सी उस तां वापस नहीं आना, पर उहदी मौत दा सुनेहा जरूर आ गया। रस्ते विच जांदे हैं हुक्म आ गया परमेश्वर दा, आया हुक्म पार ब्रह्म का, उस अल्लाह उस पार ब्रह्म दा हुक्म आ गया। जांदियां जांदियां रस्ते विच ही हुक्म आया मौत हो गई। साहब जी कहंदे ने बड़ा कुछ बनाया, हाली मन दे चाह भी पूरे ना होए, पर जद हुक्म आया तां छोड़ चलिया। एक दिहाड़े जो कुछ बनाया सी सारा कुछ एक दिन छड़ के तुर पे है। ना पत्नी दा ख्याल, ना बच्चियां दा, ना रिश्तेदारां दा, ना सजना मित्रां दा कि आखरी वेले किसे नू मिल ही लवां, नहीं। परमेश्वर दा हुक्म बड़ा डाढा है, जद उहदा हुक्म आवे फिर किसे नू मिलण दा समा नहीं मिलदा। हुक्म बड़ा डाढा है, आया हुक्म पार ब्रह्म का, छोड़ चलिया एक दिहाड़े। हुक्म आया और एक दिन सब कुछ छड़ के इस दुनिया तू अपने प्यारियां नू रोंदा कुरलांदा छड़ के तुर पिया।

अराज मिलक जोबन ग्रह शोभा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड़ गया राज भाग जोबन जवानी ग्रह कहते ने कारण अपना कार शोभा सोना रूप सारा कुछ छड़ के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार कोड़े लाल लाख बयानी हाथी कोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड़ के जो बड़े चा नाल बनाई एक दिन तुर पिया।

साहब जी बाणी विच बयान करदे ने ओ पत्नी किवें जीवन बतावे जिदा पति एक वरी गया ते मुड़ के वापस नहीं आया।

कदी हसो ना, क्यों मौत एक सच्चाई है, जीवन झूठ है। असी लोग मौत नू भुला देने हैं, पर मौत इंसान नू कदी नहीं भुलदी। समय नाल ओ आके ले जांदी, क्योंकि उदा हुक्म बड़ा डर है। पति ना रवे ते औरत दा जीवन कहो जे है, तन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने। औरत दे दर्द नू समझिया, अपने आप नू फिर कहन लगे, ऐ परमेश्वर, ऐ अकाल पुरख, तू मेरा पति है। जिवें औरत दा जीवन पति तो बगैर कुछ नहीं, तू मेरा पति है, तेरे बगैर मेरा

सुंदर अखाड़े रण में जिते पवाड़े, हर इंसान ये चाहता है कि मैं किसे ना किसे ते हुक्म चलावा, मेरी हुकूमत होवे, दुनिया मैनू सलाम करे। ते इंसान लड़ाइयां जितता है, तरक्कियां करता है, बड़ा कुछ बना भी लेंदा है, ये भी कहता है हों मारो हों बंदो छोड़ो, मुख ते एव पबाड़े। मुख कहंदे ने मोह नूं, मोह तूं इह भी कहंदा है मैं जिन्हों चाहवां उन्हों मार सकदा, जिन्हों चाहवां उन्हों छड़ सकदा। पर साहिब जी कहंदे ने दुनिया ते हुक्म चलाण वाला कल भी सलाह करके सौंदा है,

साढ़ा भी हुण आखरी समा आ गया है, ज्योति ज्योत समाण दा समा, पर साड़ी इच्छा गोइंदवाल साहब जाके असी अपना शरीर त्यागीए। ये सुन दे सार सारियां संगतां वैराग च आ गई हैं कि प्यारे गुरु ज्योति ज्योत समा जाणगे असी किस तरह जीवांगे। सारी संगत परिवार इकट्ठे हो गए। गुरु रामदास अमृत वेले संगतां दे नाल अपने परिवार दे नाल अमृतसर साहब तो चले गोइंदवाल साहब पहुंचे। शाम नूं जदों पहुंचे हुक्म कीता जाओ भाई इशनान करो आराम करो, असां सवेरे शरीर त्यागना है। पर किन्नू आराम चंगा लगता है, किन्नू नींदर आंदी है। आज दी रात बीत गई, अमृत वेला होया, सतगुरां इशनान कीता है, अपने आसन ते बैठ गए ने। चार सवेरे संगत बैठी है, हाथ जोड़ के अखां विच अथरू ने। गुरु रामदास जी दे सुपत्नी माता पानी हाथ जोड़ के कहन लगी, मैनू भी नाल ले चलो, तुहाडे पिछे रह के हुण मैं की करना है। गुरु रामदास जी कहन लगे, भाई जीवन ते मौत परमेश्वर दे हाथ है। जीवन ओ देंदा है, जीवन लेंदा भी ओ है। इस शरीर नू गवाण दा किसे नू कोई हुक्म नहीं, ओदा हक नहीं बनदा। समा साडा आया है, असां ज्योति ज्योत समाणा है, पर तुसां हाले बड़े काम करने। फिर प्यार भरी एक निगाह अपने सुपुत्र गुरु अर्जन साहब वाल देखिया, एक निगाह सारी संगत वाल देखिया, फिर अखां बंद कर लईयां। देखण वालियां नूं इस तरह जापदा है, हुणे अखां खुलण गईयां, हुणे कुछ कहणगे, हुणे बुल हिलणगे, कोई अमृत बचन सुनाणगे। पर समा ओ आ गया, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। धन गुरु रामदास ज्योति ज्योत समा गए ने, और उपदेश कर गए किसी ने रोना नहीं, क्योंकि रोण दा लाभ कोई नहीं। मत मैं पिछे कोई रोव सी, सो मैं मूल ना पाया। रोना नहीं, परमेश्वर दा कीर्तन करना है, सिमरन करना है, ताकि सिमरन सदका विछड़ी रूह नूं परमेश्वर अल्लाह दे चरणा विच जगह मिले। ए उपदेश कर गए ने, भाई अगर कोई विछड़ जाए दुनिया ना त्यागना, विराग विच पै के अपना शरीर ना गवा लेना, दुनिया विच रहना, दुनिया नूं नाशवान समझना है। दुनिया दे काम भी सारे करने ने, पर नाशवान समझ के किसे दा बुरा नहीं करना, किस ना ठगी नहीं करनी। जीवन उच्चा ते सुच्चा बताना है। गुरु साहिब जी कहंदे ने, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत शब्द ना पछाने। नांगा आया नांगो जासी, ज्यों हस्ती खाक शाने, संत सज्जन सुनो सब मीता, झूठा ए पसारा, मेरी मेरी कर कर डूबे, खप खप मोए गवारा। गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा, एक नाम ने निस्तारा करना है। अज दा कीर्तन आपां सुन के अपने मना विच धारीए, एक दिन मरना है, ताकि जीवन सफला करके जाइए।

प्राचीन प्रसिद्ध राग गुजरी भगती भाव के गायन लई विशेष अनुकूल मनिया जाता है। इस राग की संपूर्ण रचना करुणा रस नाल ओत पोत होने कारण संगीतकार ने इसकी प्रकृति करुण मनी है। हर श्रद्धा हर प्यास इसका तरला है। शौ नूं पौना ही जीवन का मकसद है, यही दर्शाया है गुजरी जात गवार जा सौ पाए अपना गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना। सौ पाउण लई तन मन अर्पो पूज चढ़ावो सब कुछ ही अर्पणा पैंदा है। इस राग विच ऋषव गंधार अते धैवत कोमल लगते हैं। मध्यम तीबर है और पंचम वर्जत है। निषाद शुद्ध लगता है। इसका बादी सुर धैवत अते संवादी रे है। गायन समा दिन का दूजा पहर। निर्धारित राग गुजरी विच पहला शब्द श्रवण करो। गा रहे हैं भाई तेजपाल सिंह जी, भाई सुरिंद्रपाल सिंह जी, सिंह बंधु। शब्द दे बोल हैं ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो। दूजा शब्द भाई निरंजन सिंह जी की आवाज़ विच श्रवण करो। शब्द है गुजरी जात गवार जा सौ पाए अपना। पहला शब्द ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो।